0: ये विक्टोरिया पार्क पीटीए विक्टोरिया पार्क प्रिंस ओवर।
1: विक्टोरिया
0: पार्क कैन यू गिव मी अ कॉल प्लीज ओवर।
1: डालिंग।